से बयान करते रहेंगे। इसराइल जनूबी लुबनान पर हमले जारी रखे हुए है। इसराइल ने लुबनान के जुनूब में नबाती के इलाके को हदफ बनाकर नए हमले शुरू किए हैं। हमलों में फजाई और ड्रोन हमलों के साथ साथ तोपखाना बमबारी और धमाके भी शामिल थे। लुबनान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी NNA ने ईता अल शाब के करीब दो धमाकों और नबतियाल फोका में दो अलग अलग ड्रोन हमलों की इत्तला दी है। इसराइली फौज ने बैत याहून में मकानात को भी आग लगा दी और अली अलतार पहाड़ियों के करीब फजाई हमले किए हैं। हलाकतों के हवाले से अभी तक कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। इसराइली फौज ने खित्ते में कशीदगी में कमी के जेर मकसद शामी और इसराइली वफूद के दरमियान तय पाने वाले ताज़ा मुजाकरात के बाद शाम के जुर्म में एक इलाके पर बमबारी की है। अल अखबारिया टीवी के मुताबिक इसराइली काबस फौज ने बैत जिन के करीब बात अल वर्दा पहाड़ी को चार तोपखानों से निशाना बनाया है। ताहम किसी जानी या माली नुकसान के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई। यह हमला अमरीका के ज़ेर सालसी शाम के वज़ीर ख़ारजा असद अल शीबानी की सरबराही में शामी वफद की इसराइली वफद से उर्दन में तय पाने वाली मुलाकात से तकरीबन एक हफ्ते बाद किया गया है। शाम की सरकारी खबर रसाई एजेंसी सना ने एक सफारती जरिए के हवाले से कहा है कि यह मुलाकात इसराइल की जानब से इससे कबल एक शामी फजाई अड्डे पर किए गए हमले के बाद कशीदगी कम करने की सफारती कोशिशों के तहत हुई थी। शाम के सदर अहमद अल शरा ने गुज़श्ता माह कहा था कि दमिश्क हुकूमत और इसराइल के साथ एक ऐसे सिक्योरिटी मुआहदे तक पहुँचने के लिए काम किया जा रहा है जो मकबूजा गुलान की पहाड़ियों पर शाम के हक से दस्तबरदार हुए बगैर शामी अमन की राह हमवार करेगा। वाज़ह रहे कि इसराइल 1967 से शाम की गोलान पहाड़ियों के एक बड़े हिस्से पर काबिज़ है।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इसराइल की गजा पर मुसलत करदा नस्ल कुशी जंग में कत्ल किए गए फलस्तीनियों की तादाद 73,500 के करीब पहुंच गई है। गजा के सेहत के हुकाम के मुताबिक इसराइल की गजा में जारी नस्ल कुशी जंग में हलाकतों की तादाद 73,450 हो गई है। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान कत्ल किए गए कम से कम 9 फलस्तीनियों की लाशें और मलबे से निकाले गए एक शख्स की बाकियात को अस्पतालों तक पहुंचा दिया गया है। इसी दौरान 18 अफराद जख्मी भी हुए हैं। फलस्तीन वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि इसराइल अक्टूबर 2025 में जंगबंदी के बाद से अब तक की खिलाफ वर्जियों में 1,313 फलस्तीनियों को कत्ल और 4,300 से जायद को जख्मी कर चुका है। वेंसवेला के अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगस ने कहा है कि अमरीका के साथ तय पाने वाला तवानाई का मुआहदा 25 साल तक नाफस रहेगा। मुआहदे के तहत खाम तेल की पैदावार बढ़ाकर यौमिया 15 लाख बैरल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, ताहम मुल्क अपने कुदरती वसाइल पर खुद मुख्तारी बरकरार रखेगा। रोड्रिगस ने रात गए जारी करदा खिताब में इस मुआहदे को मईशत की बहाली और हुकूमती आमदनी में इजाफे में मदद देने वाला एक तारीखी मुआहदा करार दिया और कहा है कि यह मुआहदा मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील करेगा। रोड्रिगस ने सरकारी टेलीविजन VTV को दिए गए बयान में कहा है कि यह 25 साल दो तरफा मनसूबा तेल के 17 स्ट्रेटेजिक मैदानों की तरक्की का तस्वुर पेश करता है और यौमिया 15 लाख बैरल से ज्यादा पैदावार हासिल करने का हदफ रखता है। उन्होंने कहा है कि पहले मरहले में यौमिया 15 लाख बैरल पैदावार दी जाएगी। अलावा असीन शोबा तवानाई के वसी तर तरक्याती मनसूबे के तहत तेल के ऐसे 8 ब्लॉक भी पैदावार के लिए खोले जाएंगे जिन्हें इससे कबल तरक्की नहीं दी गई थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस उम्मीद के साथ कि अमरीकी कंपनियां वेनेजुएला के शदीद मुतासरा शोबा तेल को दोबारा फाल कर सकती और अमरीका में ईंधन की कीमतें कम करने के लिए तेल फ्राहम कर सकती हैं, जुमा के रोज वेनेजुएला के तेल के जखायर पर जुज़वी कंट्रोल हासिल करने के मनसूबों का ऐलान किया था। कैनेडा के सूबा ओंटारियो के वजीर आला डिग फोर्ट ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से दुनिया की बड़ी झीलों में शुमार होने वाली ओंटारियो झील का नाम तब्दील करके अमरीका झील रखने के मनसूबे का ऐलान किए जाने से चंद रोज बाद ओंटारियो के शहर विनोवा में ओंटारियो झील का नया साइन बोर्ड नस्ब करके इसकी रूनमाई की है। फोर्ट ने हफ्ते के रोज एक्स से जारी करदा वीडियो में कहा है कि हम यहाँ हमारे सूबे और हमारी मुल्क के आंख के तारे ओंटारियो झील के किनारे खड़े हैं। आपने सुना होगा कि सदर ट्रंप इस झील का नाम तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें यह बात पसंद नहीं कि ओंटारियो और कनाडा अपने हकूक का दिफा कर रहे हैं, लेकिन जरा संजीदगी से सोचें। उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप से बहुत पहले भी इस झील का नाम

30 अगस्त सामिन, आज हम 30 अगस्त यौम फ़तेह मना रहे हैं। ये तुर्की की तारीख का वो दिन है जिस दिन जंगे निजात फ़तेह से हमगनार हुई। पहली जंग अजीम के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर गैर मुल्की ताकतों के कब्जे के बाद यूनान ने भी अनातोलिया पर कब्जे की कोशिशें शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जंग आज़ादी का आगाज हुआ। ये जंग कई वर्ष तक जारी रही। जंग आज़ादी का आखिरी मरहला 30 अगस्त 1922 के माश कुमानदान मुहारबे में हासिल होने वाली अजीम फतेह थी। इस फतेह ने आज़ाद जमहूरिया तुर्की के कयाम की राह हमवार की। आज के दिन हम अपनी आज़ादी की जमानत, अपने बहादुर फौज और अपनी अजीम कौम को 30 अगस्त यौम फतेह की मुबारकबाद पेश करते हैं। हम इन अजीम अबाओजदाद को भी इंतहाई एहतराम, तशक्कुर और अकीदत के साथ याद करते हैं, जिन्होंने इस मुकद्दस फतेह के हसूल में किरदार अदा किया, अपना खून और पसीना बहाया और ये खूबसूरत वतन हमारे लिए वर्से में छोड़ा। अल्लाह ताला हमारे इन अजीम शोहदा और असलाफ पर अपनी रहमतें नाजल फरमाए। आमीन।